0: हाँ जी हाँ
1: जी जी जी जी
0: Litchfield Woods for the nursing home complaint.
1: अरे